0: Mealmakers connects people who love to cook with older neighbours who would enjoy a freshly prepared meal and a friendly chat. If you or someone you know could benefit from Mealmakers, you can find out more by calling 0141 551 8118, by emailing us at mealmakers@thefoodtrain.co.uk, or by visiting our website www.thefoodtrain.co.uk.
1: सनी जी पॉजिटिव डेस्टिनेशंस प्रोजेक्ट आपके लिए रोजगार या ट्रेनिंग के मौके हासिल करने में मदद फराहम करता है। हम आपको CVs, कवर लेटर्स, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स लिखने में मदद कर सकते हैं। इंटरव्यू के एडवाइस देने के साथ साथ आपके ड्राइविंग लाइसेंस, PVG या पासपोर्ट के एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने में और कॉलेज या मजीद तालीम की कोर्सेज के लिए अप्लाई करने में भी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए sunnyg.org पर विजिट करें या 01414453741 पर कॉल करें। मुफ्त मुलाकात की बुकिंग के लिए javed@sunnyg.org पर ईमेल करें। सनी जी रेडियो आपको पॉजिटिव डेस्टिनेशंस तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है।
2: And welcome back. You're listening to Totally Wired with me, San Fran, and Sunny Govan Radio 103.5 FM. And my guest, Mohammed Asif, Director of the Afghan Human Rights Foundation and Human Rights Campaigner. You arrive in Glasgow. What was your welcome in Glasgow like? What did you do? Where did you go?
3: I arrived in the UK 26 years ago, and May, June, July, August, September, and 26 years in 5 months.
2: Right.
3: So I arrived in the UK, it was in London, and I was told by the Home Office that London was full, there was no accommodation.
2: We can't get the lid on.
3: Yeah, the Home Office, they put me on a bus to Glasgow, and I arrived about 3 a.m. in the morning, and